अनुमति ताल है और गुजरी कबीर साहब भी गुजरी, राग भी गुजरी है और आप गुजरी सुनो, गुजरी विच ही श्रवण करो इसनो। और इस जो इसका ताल है वो 11 मात्र है, पानमती ताल है।

गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए। ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करते ने, जेड़ा आके उन्हें सत्संगियां च रल गया, गुरु पुत्रां च रल गया, प्यार दे रंग च रस्ता होया, प्रभु जस कर रहा है, प्रभु जस मान रहा है। और ये धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया, आप बनाया। इस मार्ग ते जेड़े चलते ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप, जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार न कहावत है, भटकना मुक जाती है, लिव जुड़ जाती है, जीवन का आनंद लेंदे ने। भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने, कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग, मथुरा पन भाग भले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना, और ये फल वो प्राप्त कर दे। ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा, रब के सुत को तिन त्रास कहां। जो चरण गुरु चित लावत है, जेड़े गुरु चरणां नाल मन जोड़ लैंदे ने, उन्हां नूं नरक दा डर

गुरमुख पर उपकारी विरला आया। गुरमुख पर उपकारी विरला आया। पितर बाणी दे अमृत बचन हैन विरले नाही घने फैल फकड़ संसार। देखना जन्म लेकर मर जाना ही जीवन नहीं होता। जन्म लेकर जीवन में कुछ कर दिखाना जीवन होता है। सोना लोहे से कम होता है, लेकिन लोहे से सोने की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। ये असूल रहा है, जो क्वालिटी है उसके पीछे क्वांटिटी जाती है। गुरुमुख का जीवन बहुमूल्य है। 84 लाख योनि में जे अगर मनुष्य का जामा सर्व उत्तम है और मनुष्य के जामे से बहुमूल्य जीवन गुरमुख का है। और एक शब्द और जो आज के पितर शब्द में भाई गुरदास जी ने हमको सुनाया, पर उपकारी। एक शब्द को उपकार बोलते हैं और एक शब्द को परोपकार बोलते हैं। उपकार का भाव है भलाई, परोपकार का भाव है दूसरों की भलाई। देखने वाली बात तो ये भी है, दूसरों की भलाई वो कर सकता है जो अपने लिए भी कुछ सोचता है। जो अपनी भलाई आप नहीं कर सकता वो दूसरों के लिए भी क्या करेगा। अपनी भलाई पितृवाणी के अमृत वचन है, वो नहीं होती कि हम अपने आप को पला पला कहाएं, लेकिन साहिब बोलते हैं हमने पला बनना है, पला पला कहाना नहीं। जो जीवन में अपने आप को अच्छा कहलाते हैं लेकिन अच्छा बनते नहीं, जो अपने आप को पला कहलाते हैं पला बनते नहीं, साहब कहते हैं उनके नजदीक भलाई आ नहीं सकती, अच्छाई आ नहीं सकती। आपस को जो पला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे। हमने अच्छा बनना है कहाना नहीं। देखना भला बनो लेकिन अपने आप को भला कहाते ना रहो।
परोपकारी दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हुए जो परमात्मा से विछड़े हुए हैं उनको हरि की पंक्ति में लगाकर उनका मिलाप करवाते हैं। धर्मी का जीवन ऐसा है जैसे भाई गुरदास जी ने एक और पितर शब्द में कहा, आप सहंदे दुख जग वरसाया। मैंने एक बात सुनी थी, स्कूल के विद्यार्थी अपने उस्ताद को बोले, हमें ये बताओ कि हमें अपने आप को धर्मी कहलाना है कि नहीं। उस्ताद ने बोला, सिर्फ अपने आप को धर्मी कहला कर क्या करोगे? देखना, इस बात का जवाब जो है मैं आपको अभ्यास के रूप में दूंगा, प्रैक्टिकल के रूप में दूंगा। हो सकता है जे अगर मैंने बिना अभ्यास के आपको उत्तर दिया शायद आप ना समझ सकें। उन छात्राओं को जब स्कूल में छुट्टी दे दी गई वो अपने अपने घर जाने लगे। रास्ते में क्या देखा? जिस रास्ते से गुजरना था उस रास्ते में कंडे बिछे हुए थे, कांटे थे, रास्ता ठीक नहीं था। बोतान छात्रों ने क्या किया? अपना अपना रास्ता बनाकर वो रास्ते में आगे निकल गए, दूसरों को बताते रहे जिस रास्ते से हम निकले उस रास्ते के पीछे आप आ जाना। लेकिन एक छात्र पीछे रह गया। उस छात्र ने बोला, मैं तो अभी नहीं आऊंगा, देखना पहले मैं रास्ते को साफ करूंगा। जो रास्ते में कांटे बिछाए हुए हैं उनको हटाऊंगा, साफ करूंगा। दूसरे छात्र बोले, आप क्या करोगे? पीछे आ जाओ, पीछे रहकर क्या करोगे? वो छात्र बोला, ऐसे नहीं, जो मेरे पीछे आएंगे इस रास्ते पे आने वाले उनके लिए भी मैंने रास्ता बनाना है। देखना, मैं तो आप जैसा रास्ता बनाकर चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरे पीछे आएंगे उनका क्या होगा? वो छात्र बोले, आपने क्या लेना है? क्या आप सारा रास्ता साफ कर लोगे? वो फिर छात्र बोला, देखो जे मेरे से ये रास्ता साफ नहीं हुआ, लेकिन मैं यहां पर ही रुक जाऊंगा, जो दूसरे रास्ते पे आने वाले आएंगे मेरे पीछे उनके साथ उनको लेकर रास्ता बनाऊंगा। उस्ताद बोला, धर्मी कहलाने से कोई धर्मी नहीं बनता, धर्मी बनने से धर्मी बनता है। देखो ये छात्र अपने लिए ही रास्ता नहीं बनाता, दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है।
धर्मी अपने जीवन के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीता है। धर्मी अपने आप को तो दुख सह लेता है, लेकिन दूसरों को सुख बरसाता है। परोपकारी जो है, दूसरों के भलाई के लिए सदा ही तत्पर रहता है, अपने आप को त्याग में पाकर दूसरों को सुख देकर जीवन की युक्ति बताता है। धर्मी कहलाने से कोई धर्मी नहीं, धर्मी बनने से धर्मी है। अपने आप को सिख कहलाने से कोई सिख नहीं, सिख बनने से सिख है। अपने आप को सत्संगी कहलाने से कोई सत्संगी नहीं, सत्संगी बनने से सत्संगी है। अपने आप को साहिब का सेवक कहलाने से कोई सेवक नहीं, सेवक बनने से सेवक है। आज भाई गुरदास जी इसे ही पितर वचन के लिए एक पौड़ी में ऐसे बताते हैं, एक वृक्ष का प्रमाण देकर। परोपकारी जनों के लिए एक वृक्ष का प्रमाण देकर हमें ऐसे समझाते हैं, कैसे समझा रहे हैं, आओ रचना पितर करिए। उनका ये पितर शब्द सब साथ में साथ लेकर गुरु की अपार कृपा से गायन करें।

एक वृक्ष का प्रमाण देकर परोपकारी जनों का स्वरूप प्रकट करते हैं। कहते देखना एक वृक्ष ऐसे दिखाई देता है जैसे उसका सिर नीचे और उसके पांव ऊपर हैं, और ऐसा वृक्ष आप दुख सहकर भी दूसरों को सुख बरसाता है। देखना दूसरों को फल देने के लिए दूसरों से बट्टे भी खाता है, ईंटों की बरखा होती है, पत्थरों की बरखा होती है, फल लेने वाले उसको पत्थर भी मारते हैं, वो पत्थर खाकर भी उनको फल देता है। फिर कहते हैं देखना उनको कणी छांव भी देता है, छांव देकर उनके अंदर आराम देकर उनके मन को परचाता है। ये भी देखा है उसको काटने वाले काट देते हैं, लेकिन उसी वृक्ष की लकड़ी का फटा दरिया से उनको पार भी करता है। पर ये बोलते हैं कोई कोई है ऐसा मनुष्य जामे में, कोई कोई ऐसा है जो गुरमुख है, जो अपने आप को दुखों में डालकर दूसरों के दुख अपनी झोली में पाकर दूसरों को सुख बरसाता है। ऐसे लगता है परोपकारी जन जगत में इसलिए आते हैं दूसरों को जो कराहे पे हुए हैं उनको राह पाने के लिए, जो अंधकार में फंसे हुए हैं उनको अंधकार से मुक्त कराने के लिए, दूसरों के दुख अपनी झोली में पाकर दूसरों को सुख बरसाने के लिए। लेकिन भाई गुरदास जी अगली पंक्ति में बोलते हैं गुरमुख सुख फल पाया। गुरुमुख का सुख फल क्या है? जिसकी प्राप्ति होती है आप गवाया, अपनी मैं को मारकर अपने आप को गवाते हैं लेकिन गिनाते नहीं। हम तो संसार में आते हैं इतना करते नहीं जितना गिनाते हैं, लेकिन गुरमुख आप गवाए ना आप गणा रहे। तन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठे थे, एक गुरमुख भाई गागर पानी की भरकर ले आता। गुरु तेग बहादुर साहब जी उस गागर को डोल देते, कितनी गागरें आई बारंबार, लेकिन हर गागर को श्री गुरु तेग बहादुर साहब उस गागर को उसके पानी को डोल देते। देखते रहे गागर भरने वाले के माथे पे क्या प्रभाव है, वो तो नदी से कुएं से पानी लेकर आता है, लेकिन आते ही वो पानी डोल देते हैं। उसके मस्तक के देखते रहे कैसा प्रभाव है, कोई चूड़ी तो नहीं, इस पानी डोलने का कोई प्रभाव तो नहीं, लेकिन जब देखा उसके मस्तक के खेड़े को, निरंतर प्यार को, उसका सिर झुका हुआ, वो तो हुक्म मान रहा है,
साहिब के हुक्म में सेवा कर रहा है, उसका तो मकसद है साहिब की सेवा करना। उसका तो आदर्श है सेवा में जूझना, क्योंकि सेवक मजबूरियों के आगे नहीं झुकता, मजबूरियों के साथ जूझता है। सेवक रुकावटों के आगे नहीं झुकता, उसके साथ जूझता है। सेवक दुखों के आगे समर्पण नहीं करता, दुखों से जूझता है। सेवक ने साहिब को अपने आप को समर्पण किया हुआ है। तन श्री गुरु तेग बहादुर उठ पड़े, उसको अपने गले से लगा लिया और बोले, भाई कन्हैया, आपकी गागर जीवन का उधार बनेगी। भाई कन्हैया, आपके जो कांधों पे गागर है, इसमें प्रभु के सिमरन की बरखा निरंतर होती रहेगी, तो ये गागर सेवा का स्वरूप बन जाएगी, और यही गागर जो सेवा का स्वरूप बनेगी, उस गागर में प्रभु के सिमरन की बरखा होगी, तो ये गागर ही मनुष्य के जीवन का उद्धार बन जाएगी, ये गागर ही परोपकारी स्वरूप बनकर ऐसा स्वरूप बनेगी पाई कन्हैया, जैसे इस गागर में सिमरन की बरखा होगी, उस सिमरन की बरखा से जो इस सेवा के स्वरूप में हिस्सा लेगा, शामिल होगा, उसमें सिदक, उसमें सबर, उसमें साहस, उसमें संतोष का करिश्मा प्रकट हो जाएगा। सेवक देखना तो यह है, भाई कन्हैया ने सेवा की, उस सेवा से सेवा राम ने अपने आप को प्रकट किया। आखो वाहिगुरु, सेवा राम से भाई सहज राम ने अपने आप को प्रकट किया। सिदकी भाई अड्डन शाह प्रकट हुए, भाई अड्डन शाह से भाई धर्मदास, भाई दरबारी दास प्रकट हुए। इनमें देखा गया सिदक को भी देखा गया। भाई सेवा राम एक दिन बैठे थे, कैसे परोपकारी थे, प्रसादा छकने लगे, 36 प्रकार के भोजन आगे पड़े हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक साग का और प्रसादे का बर्तन ले लिया, छकना शुरू कर दिया। साथ में जिज्ञासु बोला, आपके हृदय में तो परमेश्वर है, आपको ये 36 प्रकार का भोजन छकने का क्या भय है? वो बोले, देखना, जब राजे दूसरे के किले को जीतना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, बाहर से राशन भेजना बंद कर देते हैं। जो बाहर से राशन भेजना बंद कर देते हैं, क्यों बंद करते हैं, ताकि किले के भीतर में जो है बिना उस राशन से कमजोर पड़ जाएं, वो किले को खाली करते हैं। ऐसे हमने भी सोचा, हमारे श्री रूप किले में जो तरह तरह के लाभ के और लोभ के चस्के, जो पदार्थों के लोग भीतर में हमें प्रभु का सिमरन नहीं करने देते, हमने सोच लिया कि शरीर के भीतर ये जीभ के चस्कों के स्वाद जो है, ऐसे रस क्यों भेजे जाएं, जिनके भेजने से हमारी लाभ और लोभ बढ़ जाएंगे, प्रभु का सिमरन नहीं कर सकेंगे। इसी में देखा सिदक भी प्रकट हुआ सेवा में। आखो भाई, सिदकियों ने सिदक प्रकट किया, वो डोले नहीं, भाई अड्डन शाह थे,
بھائی اڈن شاہ ایک فقیر کے ساتھ بیٹھے تھے. ان دنوں میں یہ بات بولی جاتی تھی جو مرلے گرو کا سکھ ہوگا اس کا کوئی ہمیں بتا دے اس کے ایک سر کا انعام دیا جائے گا. تو ادھر سے بادشاہ گزر رہا تھا, اس فقیر نے بولا راجے کے پوچھنے سے یہ کون ہے؟ تو فقیر بولا یہ گرو نانک کا سکھ ہے. بھائی اڈن شاہ بولے ہم گرو گوبند سنگھ کے سکھ ہیں. وہ تو راجا چلا گیا, لیکن فقیر بولا میں نے تو اس کر کے بولا تھا کہ ایک سر کی یہ انعام دیتے ہیں ایک سکھ کے سر کا, میں نے تو اس کر کے بولا تھا گرو نانک تے گرو گوبند سنگھ میں انتر کیا ہے. کہ تو اسی لیے تو ہم بولتے ہیں, میں پیسے کیوں بولوں کہ میں گرو گوبند سنگھ کا سکھ نہیں ہوں. جس گرو کا ہم نے نرپو نام جپا, نرپو جپ ہے سگل پو مٹ ہے, سارے بول نرپو جپ ہے سگل پو مٹ ہے. ایسا ہی ساس پرگٹ ہوا سیوا میں پرپکاری جنوں میں. ایک دن مہاراجا رنجیت سنگھ گڑھ شنکر کو جیتنے کے لیے جا رہا تھا. راستے میں اس نے بولا اس سیوا پنتھی استھان ہے ارداس کرا لیں. ارداس ہو گئی. مہاراجا رنجیت سنگھ اس جنگ کو جیت کر جب واپس آیا تو بولیا بھائی صاحب آپ کو جگیر لگا دیں. آخو بھائی کرو آپ نے ارداس کی ہم نے جیت پراپت کی آپ کو جگیر لگا دیں. پائی درباری داس بولے ہے راجا رنجیت سنگھ جب آپ یہاں آئے تھے تو ایک منگتا بن کر آئے تھے, اب آپ داتا بن کر آ گئے. جب آئے تھے تو ایک منگتا بن کر, تب تو ایک منگتا بن کر آئے تھے, اتنی دیر میں آپ داتا بن گئے. آپ بھول گئے جس داتے کے دوار پر آپ منگتا بن کر آئے تھے, جس نے آپ کو جیت کی طرف آپ کے اوپر کرپا کی. وہ داتا وہی ہے جو سب کے اوپر کرپا کرتا ہے. کیا آپ اس داتے کے شریک بن کر آ گئے؟ سیوا کرنے والے پرپکاری جنوں میں احساس ہے وہ کبھی بھی پہ نہیں کھاتے کہ ہم راجے کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. پرپکاری جنوں نے اپنے آپ کو گوا کر سکھ پھل پایا ہے. آخو بھائی کرو ایسی وچار سامنے آتی ہے گرمکھ ہونا ہی سکھ پھل ہے, لیکن اس سکھ پھل کی پراپتی اسی کو ہوتی ہے جیسے پتر بانی میں بولا آپ گواہی ہے تاں شو پائی ہے. میں بینتی کرتا ہوں, دیکھنا آپ یہاں پر بیٹھے ہیں ایک پربھو کا امرتواڑی کا ایک بہت بسمادی بگیچہ ہے. آخو بھائی کرو اے امرت کی باڑی ہے رے تین ہر پورے کریا. یہ جو سات سنگت میں بیٹھے ہیں اے پربھو کا بہت سندر بگیچہ ہے. اس بگیچے میں جو بوٹے ہیں ستگرو مالی نے پرمیشر نے پرماتما نے اپار کرپا کر گرو مالی کو یہ کام سونپا ہے. سات سنگت بگیچے میں جو بوٹے
गुरु माली की नजर में पैदा होते हैं, वो सब गुरुमुख पैदा होते हैं। ऐसे लगता है कि गुरु माली सत्संगत में गुरुमुख पैदा करता है। पितृवाणी में बोला, सिंचन हारे एक है माली, माली एक ही है गुरु माली, खबर करत है पात पत डाली, जिस माली को पत्ते पत्ते की डाली डाली की खबर है। आप यहां बैठे हैं पर गुरु माली जानता है काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की फिर पछानत। माली कैसा है, माली के पितर चरणों में शीश झुकता है, ऐसा भी विचार आता है वो धरती कैसी होगी जिस धरती के ये बूटे हैं। और कैसा बगीचा है, हर बूटे को फल लगता है, इसमें कोई ऐसा बूटा नहीं जिसको फल ना लगता हो, और सब बूटों को एक जैसा फल लगता है, सब ना फल लागे नाम एक को। आखो भाई सगली फूली निफल ना काई, कोई ऐसा बूटा नहीं जिसको फल नहीं लगता। सारी वनस्पति गुरु के बगीचे की फलती है फूलती है, वो कैसी धरती होगी, कैसा बगीचा है। और गुरु माली एक भरोसे में है, कैसा भरोसा, गुरु माली का ये भरोसा है, जैसा ये बूटा है, जैसा मैंने बीज बोया, जैसी मैंने क्यारी लगाई, उसको फल ऐसा लगे, उस फल में मुड़ के उस फल में मैं देखूं, वैसे ही बीज को जैसे बीज ने यह फल पैदा किया है। आखो भाई सात संगियों में गुरु का भरोसा है, गुरुमुखों में गुरु का भरोसा है कि गुरुमुख को ऐसा फल लगेगा जिस गुरुमंत्र से गुरु शब्द की कमाई से इसको फल लग रहा है, जब फल लगेगा उस फल में गुरुमुख में ही ओ सच गुरुमंत्र पार ब्रह्म का मंत्र गुरु शब्द का सार प्रकट हो जाएगा। लेकिन ये भी सामने एक बात दिखाई देती है, जो धरती है, धरती में जो बीज बोया गया है धरती ने कभी झूठ नहीं बोला। आखो भाई धरती झूठ बोलेगी भी नहीं, कभी भी धरती झूठ नहीं बोलती, धरती कभी भी झूठ बोलेगी नहीं। जैसा बीज आपने डाला है, जब ये धरती अपना मुख खोलेगी बता देगी आपने क्या बीजा है। ये नहीं हो सकता कि आप पिक बीजे, आप बोले मैंने अमृत बीजा है, आप जो मर्ची बोले जैसा चाहे बोले, लेकिन जब धरती ने मुख खोलना है प्रकट कर देना है आपने क्या बोया है। धरती ने झूठ कभी नहीं बोला ना बोलना है, जो बोया गया है वो प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही सत्संगत रूपी धरती जहां गुरमुख पैदा होते हैं वो भी झूठ नहीं बोलती। आखो भाई जैसी कोई भावना लेकर सत्संग में आता है वो प्रकट कर देती है। कोई भी भावना लेकर आओगे वो प्रकट कर देगी, आप क्या बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो क्या झूठ बोल रहे हो। लेकिन धरती ने तो वो बोल देना है जो आपकी भावनाओं में है। आखो भाई धरती में कभी डाला हुआ बीज धरती की हिक पर नहीं फूलता जितनी देर तक धरती के सीने में ना चला जाए। आखो भाई धरती के ऊपर बीज
डाल देना ही काफी नहीं, बीज तभी ही फूलेगा पुंगरेगा जब धरती की कुख में चला जाएगा। वैसे नहीं, जे धरती की कुख में बीज जाकर पुंगरता है, ऐसे ही सत्संग में आ जाना, बैठ जाना, उठकर चले जाना ही काफी नहीं। जितनी देर तक आकर बैठने वाले सत्संग रूपी धरती में सत का संग नहीं करते, उतनी देर तक ना फूल सकते हैं ना फल प्राप्त कर सकते। सिर्फ बैठना ते उठना ही सत का संग नहीं होता। सत का संग तो वो है, आपने यहां पर आकर सत का संग भी करना होगा, अपनी सुरती को ऐसे गुणों में लगाना होगा जो सत्स्वरूप गुण है, जिन गुणों से हमें वो फल प्राप्त होगा जिस फल की बात सतगुरु ने की, वीण गुण कीते भगत ना हुए आखो वाहिगुरु। पवित्र बाणी में एक शब्द में ऐसा बोला कैसा, आप सारे रल कर आओ शब्द गायन करें।

कृपा दे और नाम है मर्सी ऑफ ऑन मी एंड गिव मी योर नेम नाम सात जना की मांगो तो आई वांट द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ सेंट्स नाउ द पीपल फार फ्रॉम मे सदापुर दिस इज माई डिजायर ओ गॉड ओ लॉर्ड काइंडली फुलफिल Another desire. I always repeat your name again and again. Saas saas bhato me dhao. Saas saas saas grass. The breath comes and breath goes. I always meditate upon you. Charan kamal se lage preet. भगत करो प्रभु की एंड ऑलवेज डिवोट अपॉन द नेम ऑफ गॉड एक एक ओट एको आधार और ओनली वन सपोर्ट एंड वन व्हाट इज दैट नानक मांगे लागू आई ओनली आस्क फॉर द नेम

लाल खोई है, फिर ए अवसर कद लाहां। गुरु की बाणी कह रही है कि ए मनुख तू अमोलक हीरे लालां तो भी महंगे अपने श्वास धंधियां विच बिता के माया नू इकत्र करन लई तू सारे ए लाल अजाई गवाई आउना है। ए दुनिया दे पदार्थ दुनिया दे सुख ए टुटे हुए कच दी दियाई हन, जिना कोल धन दौलत दुनिया दे सुख हन आवेख जाके ओ कितने चिंतातुर हन के किते कोई चोर चुरा ना लवे, किते कोई होर ना ले जावे, किते कोई होर मुसीबत ना पै जावे। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे आ जिस घर विच बहुती माया है उत्थे बहुतियां चिंतावां दा निवास है, क्योंकि डर है कोई चोरी ना करके ले जाए, रात नूं नींद नहीं। सद भावना रखण वाला उस मालक दे हुक्म विच रहण वाला एक गरीब तां अपनी नींदर सौंदा है अपनी उठदा है, पर धनवान बंदे नूं नींद नहीं पैंदी भई मते कोई चुरा के ही ना लै जावे। उच्चारण करो श्री आख्या ऐसे धन तो तैं की खटिया, काच बादरे लाल खोई है, तू अमोलक श्वासां दे लाल दे के ते दुनियावी पत्थरां नूं खरीद के अपने आप नूं बड़ा धनवान समझना है, बड़ा बलवान।

पवित्र उपदेश भाई गुरुदास जी का उच्चारण किया होया है। जेड़े गुरुमुख प्यारे मन करके कीर्तन विच बैठते ने ना, उन्हां ते किवें गुरु बख्शियां करता है। भाई

आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है उन्हें आख्या जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नू जांदिया नहीं देखिया। मन विच भरम हो गया राणी किथे जांदी है मैनू दसण तो बगैर। अज दूजा दिन होया इन्हें सोचा भी हुण मैं रात नू ख्याल रखना है, सोना नहीं, देखना है राणी।

तेरी बाणी विच बड़िया रहमतां ने। साध संगत मिल गाम दे, राती जाए सुने गुरबाणी। अतारा राणी दी उदाहरण दे के भाई गुरुदास जी सानू समझाउण दा जतन कर रहे ने। कीर्तन विच बैठेगा ना दुनिया दे दुखां कलेशां तों सतगुरु तैनू आप बचा लवेगा।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे सदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तो उतर गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी हूं मेरे पति जिन्हें मैं इतने छुटके गई सी, कितने ने, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पियाया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: ए तो ठीक है, पर थोड़ा रोग कि ठीक होया?
0: ये सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी टाणी नूं फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नूं भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार स्वीकार सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मपारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

सारा संसार कुल खलकत कुल दुनिया मैं मेरे बिच लगी हुई है। ए मेरा है, ए मेरा है, ए मेरा है। लेकिन साहिब कहंदे ने ए मनुख ए बंदिया कदी ए भी आखी कि सब कुछ तेरा है, मेरा ते है ही कुछ नहीं। जियो पिंड सब दिसदा ते तेरा दिता होया शरीर है। तेरे दिते हुए श्वास ने जब तक तू चला रहे हैं वो चल रहे हैं। तो जदों तू चाहे चलते हुए श्वासा संगल पा के रोक सकने है। तो फिर साडा ते नाना हो गया सारा कुछ। जियो पिंड सब तिसदा सब किच है तेरा।

जीओ पिंड सब दिसदा, सब कुछ है तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सारे आंखों तेरा।

आखिरी वचन सुन लेने। सिफर लगते गए, 1000 हो गए, 10 हो गए, लख बन गया। और सिफर लग गए, मिलियन हो गए, और सिफर लग गए, वधते चले गए। एक दिन बैठा बैठा सोचता, कहता वाह, बड़िया बड़िया कीमती चीजा मेरे खुदा तू छुपा के रखी है ने। बोलो सिरे, कहते मेरा बड़ा कमाल दा मेरा रब है। सिफर इतने हो गए हुण सांभे नहीं जांदे। बड़ा वड्डा शाहूकार बन गया, बड़ा वड्डा सेठ हो गया, नौकर चाकर हाथी घोड़े लश्कर बड़ा कुछ। एक दिन बैठा हुण बुजुर्ग भी हो गया, 65-70 साल की उम्र भी हो गई, हाथ में माला फड़ी बड़े कीमती पत्थर दी मोतियां वाली माला, घुमाउंदा घुमाउंदा इहदे मन में आ गया मन, कहिंदा मेरे खुदा तेरे कोल मैं मंगण गया सी ना, ते तू ते मैनू एक ही दिता है, बाकी तो सारा मैं इकट्ठा किया है। बोलो सिरे, मैं आ गया, ख्याल करना, ओही मैं।

इसी तरह ये जीवन सेवा करया करदा सी, सेवा करवाया करदा सी। पर आज जद जीवन सेवा करदा करदा पश्चिमी पासे वाल आया ताकि देखदा है एक आदमी सोता पे ते पैर उसके मेहराब वाल हन। मुसलमाना विच निमाज मक्के वाल मुंह करके पढ़दे हन। मक्के वाल पैर करनी उन्हां विच भारी बेअदबी है। सो उस जीवन नूं गुस्सा चढ़े।

काम अग्नि दे भांबड़ तो मन बचाओ ते शीतल सुख दा जानू हो इउं कर बंदगी रोजे रख ता तेरा सिदक पूरा होवेगा निभेगा। रुकन दी सलाम कीता आख्या वाह वाह अज खुदाए दे।

तुसा फरमाया सी कि अमल वड्डा हवास खमशा नू काबू करना साई नू प्यार करना इना बिन ना हिंदू वड्डा ना मुसलमान।

नाने की गल कहंदा है हाथ जोड़ उस खुदा दे अगे पेश हो अर्ज कर ओदी सिफत कर ओदे सेवका चाकरां दे पैरां दे खाक हो जा।

मैं डर के काबे दी उस्तत की थी, जिस तू ओ मुड़ के फिर अपनी असली जगह ते आ गया। इस गल दी गवाही वास्ते पढ़ो इसरार शरीयत दूजा हिस्सा।

0: ना ही नदियां विच पानी वगदा सी।
1: खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाईदा ना तद सुरग मच

0: ondan da iki hoş avukat yaptı.
1: Savaş. Şere. Mal paran yanı.
2: Çok umsalar.
0: Ay cebira. El atar. Söyle cebira.
3: मेरी बॉडी का देखने पागल हो जाएगी और मेरी सिंगिंग से कार्य की फेसिंग की ओर दी मैं बोलूँ।

परम सम्मान सत्संगी सज्जन पवित्र आत्मा गुरमुख सज्जन जितने भी माई पाई साहेब गुरु ग्रंथ साहब पात्र पवित्र कदमा अंदर अमृत वेले दिया हाजरियां भर रहे हो सोने दरबार प्यारे दरबार सतगुरु जी के पवित्र चरणों का आनंद ले रहे हो बहुत बख्शिश होवे बहुत गुरु कृपा करे ता अपनी सिर्फ सलाघा बख्शदा है सिर्फ सलाघा उन्होंने बख्शदा है जिन्हां उत्ते गुरु का कर्म होवे जिन्हां ते गुरु की बख्शिश मेर अति रहमत होवे उन्हां नूं इह सत्संग दीआं कड़ियां नसीब होंदियां हन कैसा आनंद है शब्द विच कैसा रस है शब्द विच पंक्तियां जो पढ़ रहे सां जपो ता एको नामा एक नाम नाल ही जोड़िया है एको नाम नाल ही सानू जोड़िया है होर किसे नाल नहीं जोड़िया एको जप एको साला एक सिमर एको मनया एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवान दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए एको सिमरो नानका जो जल थल रहा पर सिमरना ही बड़ा मुश्किल बड़ा कठिन है कुल दुनिया के धंधे सौखे है एक प्रभु का सिमरन सब तो औखा है बड़ा कठिन जे कोई समय ली एकाग्रता बख्श ली जितने मेरे सज्जन बैठे हो मिंट गिणवे रह गए 94 मिंट रह गए वो मिनटा असा सफल करना है सब तो पहला मन चित बिरतिया टिकाव लियाओ एक बार प्यार नाल आखो सदना आखिया जी आख लिया जी हूं किन्ना बिखरा है किन्ना मुश्किल है नहीं आखिया जाता सारे को आख्या ही नहीं गया सारे आपो अपने ध्यान में ये कठिन जी कुल दुनिया के धंधे सौखे ने एक वाहगुरु आखना मुश्किल है एक वाहगुरु आखना कठिन है ये मैं नहीं कह रहा ये गुरु बाबा कह रहे हैं रोज नहीं पढ़ते आखण औखा साचा ना बड़ा औखा है ये नहीं आख्या जाता आखो ना साधना वेख्या जी नहीं एवं तो नहीं बाबा जी बाणी च कहते आप बचन सुनियो बुरे काम को ऊट खलोया बैड़ा कर्म करना हो अधी राति दौड़ पैंदा नींदर की परवाह नहीं सुस्ती की परवाह नहीं बरादरी की परवाह नहीं मां प्यो की परवाह नहीं रिश्तेदारां दी परवाह नहीं करदा बाबा जी कहंदे बुरे काम को ऊठ खलोया ते अगली पंक्ति पढ़ी जे कदी नाम की वेला पह पह सोया वाहिगुरु आखण वेले नूं नींदर आ जांदी वाहिगुरु आखण वेले नूं उंगलान आ जांदी इहनूं सुस्ती पै जांदी इहदे कोल नहीं आख्या जांदा इह कठिन सौदा जे इह बिखड़ा सौदा जे नाले सुस्त आदमी ते आख नहीं सकदा सानूं ते कलयुग पिया होया सानूं ते कलयुग ने दबाया होया कुचलिया होया पैरां थले लताड़िया होया कलयुगी बंदा ते वाहिगुरु नहीं कह सकदा ये ओही कह सकदा जिहदे ते गुरु नानक दी कृपा होएगी एक वारी आखो तुलसी जी का बचन एक पढ़िया जी बाबा जी ने कमाल कर दिती है तुलसी जी का बचन मैं कह रहा तुहानू आखण औखा साचा ना हो क्यों औखा है तुलसी जी ने शलोक उचारे जदों मैं पढ़ना जदों मैं संतान सुनाना मैनू भी आनंद आता है मैनू भी स्वाद आता है की कहते तुलसी नाम जो राम को जिन्होंने रामायण लिखी है जिन्होंने राम का जीवन पेश किया बयान किया खोलिया खुलासा किया कहते तुलसी नाम जो राम को राम का नाम भगवान का नाम ईश्वर का नाम खुदा का नाम अल्लाह का नाम गाड़ का नाम परमेश्वर का नाम मेरे वाहिगुरु का नाम नाम सारे ही उदेश असा

मजबूरी नाल करता है। बापू कहता है कि अमृत वेले उठना है, पर बच्चा मजबूरन उठता है, चित नहीं करता। पर बापू का हुक्म तो है, मां का हुक्म तो है, एक मजबूरी नाल भी करना पैंदा है। तुलसी जी ने कमाल कर दी, कहंदे ने ए इंसान ए बंदे अज गया तू, भावे खुशी नाल कह लै ते भावे औखा होके कह लै, वाहिगुरु ने तेनू फल देने। वो कहंदे ने तुलसी नाम जो राम को रीज लेओ चाहे खीर। ते किसी ने आख्या है तुलसी जी एक ऐसा श्लोक उचारिया जी जे खुशी नाल याद करिए फल देंदा है, झोलियां भरदा है, बरकतां देंदा है, इच्छा पूरियां करदा है। ते जे प्रभु नु गुस्से नाल याद करिए, जे प्रभु नु औखा होके याद करिए, वो भी कुछ देंदा है, तां भी कुछ देंदा है। तुलसी जी कहंदे देंदा है तुलसी नाम जो राम को रीज लेओ चाहे खीर। कहंदे धरती पर ऐसो उगत है उल्टो सीधो बीज, भावे बीज सीधा पै जाए भावे पुठा पै जाए। जो किसान छटा मार दे धरती विच कोई सीधे पै जाते, कोई पुठे पै जाते, सारे बीज पूग पैंदे ने सीधे ते पुठे सारे। कहंदे ने बीज ही ए प्रभु दा नाम जिहड़ा ना ए बीज हैगा ही, भावे तू खुशी नाल कह लै ते भावे मजबूरी नाल कह लै ते भावे मेरे खोए आख रहे, एदा फल तेनू अवश्य मिलेगा। ए कोई बोलो सा एवे नहीं पातशाह कहंदे ने जपो ता एको नामा, पढ़ो ना आखो ना जपो ता एको नामा।

अपने सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा, सिमर सिमर सिमर नाम जीवा।